बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम

ऐसा लगता है ना कि जैसे कि सब कुछ थम गया हो और जैसे वक्त हाथ से फिसल रहा हो और हम बस एक ही जगह खड़े हो। जी हाँ, जब जिंदगी थोड़ी रुकी रुकी सी लगने लगे तो समझ जाइए कि ये वक्त रुक कर थोड़ा सुकून बटोरने का है, खुद से बात करने का है और पुरानी यादों की खिड़की खोलने का है। नमस्कार, आदाब और हेलो, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त इस महफिल की। जी हाँ, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों, आज का ये हमारा ये सफर कोई हड़बड़ी वाला सफर नहीं है। आज हम जिंदगी की इस रुकी हुई रफ्तार को थोड़ा इंजॉय करेंगे। बातें होंगी दिल से, गुफ्तगू होगी उन लम्हों की जो पहली बार हमारी जिंदगी में आए और हमेशा के लिए ठहर गए। क्या बात, कौन सी बात, कैसी बात, बिल्कुल जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद। जी हाँ, जैसे कि कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है, क्योंकि बातें होगी दिल से, गुफ्तगू होगी उन लम्हों की जो पहली बार हमारी जिंदगी में आए और वो वक्त, वो पल, वो हमेशा के लिए हमारे जहन में ठहर गया।

कुछ कहना है, क्योंकि अब दिल जो है कह रहा है कि अब चुप रहना नहीं है। तो दोस्तों, आज कैलेंडर पर तारीख जो भी हो, लेकिन हमारे दिमाग का कैलेंडर आज पीछे चलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उस फीलिंग की, जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आती है और फिर हमेशा के लिए दिमाग में फ्रीज हो जाती है। जी बिल्कुल, आज का हमारा विषय है वो पहली बार। याद कीजिए दोस्तों, वो पहली बार जब आपने कुछ ऐसा किया जिसमें डर भी था, एक्साइटमेंट भी थी और पेट में थोड़े थोड़े चूहे भी कूद रहे थे। यानी कि दोस्तों, आज अगले एक घंटे तक हम और आप मिलकर पुरानी यादों के संदूक खोलेंगे। तो फोन उठाइए और मुझे बताइए अपनी पहली बार की कहानी। जी हाँ, हमारा नंबर है 2213-1341 2213-1341। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो तब तक थोड़ा माहौल को और सेट करते हुए इस गीत की ओर रुक करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आप सभी का फोन पर बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, जहाँ आप बताएंगे कि वो पहली बार कि आपने किस प्रकार से वो जो बातें हैं, वो मुलाकातें हैं, वो या जिंदगी के कुछ ऐसे बचपन की वो याद जिसमें आपने पहली बार जो महसूस किया था, उन यादों को हमारे साथ साझा करने का।

वेलकम बैक दोस्तों। नॉन स्टॉप गपशप जारी है और आज हम डुबकी लगा रहे हैं यादों के समंदर में। जी हाँ, तो दोस्तों अच्छी एक बात बताइए, याद है वो बचपन की वो पहली साइकिल जब पिताजी ने पीछे से सपोर्ट वाले दो छोटे पहिए निकाल दिए थे और उन्होंने कहा था बेटा तू चला और मैंने पीछे से पकड़ा हुआ है। और तब 2 सेकेंड बाद जब हम पीछे मुड़कर देखे तो पिताजी 50 मीटर दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे और आप धम से नीचे गिरे, घुटना छीला। पर जो पहली बार बिना सपोर्ट के साइकिल चलाने की खुशी थी ना, वो आज करोड़ों की गाड़ी में भी नहीं आती। तो बस दोस्तों, आप सभी को अपना फोन उठाना है और नंबर डायल करना है 2213-1341 और अपनी जिंदगी का वो कौन सा पहली बार पल याद है जो आपको आज भी भूलने नहीं देता। फोन उठाइए और मुझे बताइए।

0: तो दोस्तों हमारे साथ हमारे लाइन में पहले लिस्टर हमारे लाइन पर है, तो चलिए दोस्तों से बात करते हुए जानते हैं कि उनकी वो पहली बार की बातें। हेलो हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम क्या है?
1: मैम हम तो अली बोले हैं।
0: आप कहाँ से बोल रहे
1: हैं? बोले
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी मैं संतरागाछी हावड़ा से बोल रहा हूँ
0: जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आप बताइए कि आपकी जिंदगी का कौन सा पहली बार आपको आज भी याद है?
1: वो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, मेरा स्कूल है, मतलब स्कूल टाइम का पहला दिन, वो मेरे को बहुत यादगार है अभी भी। और जब पहले जब हाथ पकड़ के लेके गए तो उसका बाद तो क्या है फिर तो स्कूल भी
0: हेलो
2: आवाज उसे सुन तो पाई ना
0: जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अली जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि उसको अपने स्कूल का वो पहला दिन याद है, वो स्कूल की बातें याद है, यानी कि कहीं ना कहीं वो पुरानी बातें जो है और वो पहली बार की बातें आज भी हमारे जहन में बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, क्योंकि उन पलों को हम जीते हैं इसी वजह से। तो दोस्तों आप भी पीछे मत रहिए, डायल कीजिए अपने फ़ोन नंबर जी हाँ और शेयर कीजिए अपनी कहानी और अगला गाना आप सभी के लिए। और जब तक आप शेयर कर रहे हैं अपनी बातें, फोन नंबर डायल करके, तब तक अगले गीत की ओर रुक करते हैं।

0: चलिए दोस्तों अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: मैं शोभिक शुक्र बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शोभिक जी हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी।
0: तो बताइए आपको वो कौन सी पहली बार की यादें याद है?
1: पहली जो बात जो है ना वो है साइकिल जीतना, वो मुझको बहुत अच्छे तरीके से याद है। मैं वो जो साइकिल जब चला थी वो मैं अकेला ही चला था, क्योंकि वो जो दियाल धर के चला था उसके बाद गिरी भी गया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, चोट भी लगा था। उसके बाद मेरा जो डैडी जो है दूसरी बार सेकंड टाइम में मुझको पकड़ कर उसने पीछे धोर कर मेरा मुझको शिकायत दिया था साइकिल। मैंने वो एक एक एक मंथ में मैं सीख गया था, एक मंथ के और भी कम में सीख गया था साइकिल। और एक बात मुझको याद है दीदी, स्कूल टाइम में मुझको जो हम लोग को टिफिन टाइम में टिफिन शेयर करके खाना।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम लोग घर से कोई ब्रेड पाव रोटी बोलिए और माखन में बटर पाव रोटी बोलिए और चाउमीन बोलिए जो भी लेकर गया था, तो टिफिन टाइम में हम लोग शेयर करके खाते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैं जो धरिए सपोज धरिए मैं चाउमीन लेकर गया, दूसरी जो है वो केक लेकर आया। मैं मील हम लोग मील बांट के पांच छह जन जो ग्रुप का जो दोस्त थे ग्रुप में मिलकर हम लोग खाते पीते थे, बहुत अच्छा लगता था। आप जो इस टॉपिक में दिया था ना, हाँ एक मेनी मेनी थैंक्स दीदी, क्योंकि हम लोग का जो नॉस्टैल्जिया एक बात हम लोग का मेमोरी जो है ना ताजा हो गया आज, इसलिए आपको दीदी मेनी मेनी थैंक्स दीदी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शोभिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और इतनी अच्छी यादें साझा करने के लिए भी।
1: थैंक यू दीदी। थैंक यू।
0: तो दोस्तों आपको याद है क्या अपनी पहली कमाई? जी हाँ, अपनी फर्स्ट सैलरी याद कीजिए। जब जिंदगी का पहला चेक मिला था या पहली बार हाथ में कैश आया

था, चाहे वो 500 रुपए हो या 5000 या फिर 50000। पर उस दिन जो अमीर वाली फीलिंग आती है ना, लगती है कि लगता है जैसे कि पूरा शहर अपना है। किसी ने माँ के लिए साड़ी ली थी, तो किसी ने दोस्तों को समोसा पार्टी दी थी, तो किसी ने चुपचाप पिगी बैंक में डाल दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो जो पहले वाली जो यादें होती है ना, वो जो पहली वाली फीलिंग होती है दोस्तों, वो उसे हम लोग बयां तो नहीं कर सकते शब्दों में, पर कहीं ना कहीं वो यादें, वो अनुभव, वो फीलिंग्स हमारे अंदर, हमारे मन में किसी कोने में दबी हुई सी, छिपी हुई सी रहती है। और आज भी जब वो याद आ जाए तो सच में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं।

0: दिल में कहीं तुम छुपा लो।
1: बहुत अच्छे पायल जी, आपने बहुत ही बढ़िया गाया। थैंक यू सो मच पायल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों एक आवश्यक सूचना, मालदा उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप जहां हैं जैसे हैं सुरक्षित रहें, और ये तेज हवाएं सुबह 9:24 से शुरू होने की संभावना है। तो दोस्तों स्टूडियो में वक्त हो चला है 10:43 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर।

दोस्तों बचपन बीता पैसा कमाने के लिए, पर एक और चीज़ है जो हमें बड़ा बनाती है, पहली बार अकेले सफ़र करना। याद है जब पहली बार ट्रेन के ऊपर बर्थ की टिकट मिली थी या पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, मम्मी ने डब्बा भर के पूरी पराठा रख दिया था और पिताजी ने 10 बार समझाया था किसी अनजान से कुछ लेकर मत खाना। डर लग रहा होता है कि कहीं स्टेशन ना छूट जाए, पर साथ ही साथ एक ऐसी आज़ादी मिलती है जो लगता है भाई अब हम बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी में हम बहुत आगे निकल आते हैं, नया फ़ोन, नई गाड़ियाँ, नए दोस्त, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन यह जो पहली बार वाली यादें होती है ना, ये हमारे अंदर के उस बच्चे को जिंदा रखती है जो हर छोटी चीज़ में खुश हो जाता है। तो दोस्तों अगर आज का शो सुनकर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आई हो तो आज अपने किसी पुराने दोस्त को कॉल कीजिए और कहिए याद है जब हमने पहली बार, जी हाँ, यानी कि अपनी यादों को ताज़ा कीजिए। तो दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति और मिलूंगी आपसे, जी हाँ, जल्द ही किसी शो में। तब तक के लिए दोस्तों अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाज़त, और हाँ, जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों यही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM फ्रेमबुक पर।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और इस बारिश भरी दिन में भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
0: जी हाँ, तीन का दरका है प्रोग्राम का नाम और मैं हूँ पापिया, आपकी दोस्त, होस्ट और साथी आज के दिन की। तो भाई बारिश हो रही है जबरदस्त बाहर, तो दिन होपफुली आपका अच्छा गुजर रहा होगा। तो इसी दिन के नाम चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद इरफान की आवाज़ में इस गाने से।

तो चलिए दोस्तों, अब इस प्यारे से गाने के बाद शुरुआत करते हैं तीन का तड़का के बॉलीवुड न्यूज के सिलसिले को। जी हाँ, बॉलीवुड की तीन कई सारी बड़ी और दिलचस्प खबरों के साथ हम हाजिर हो गए तीन का तड़का में। और पहली खबर यह है कि स्वतंत्रता दिवस पर बॉक्स ऑफिस पर होने जा रहा है जबरदस्त मुकाबला। जी हाँ, आवारा पंचू में इमरान हाशमी की वापसी देखने को मिलेगी, तो दूसरी ओर बंटवारा 1947 के साथ सनी देओल भी बड़े पर्दे पर दमदार अंदाज में नजर आएंगे। यानी इस बार आजादी के जश्न के साथ सिनेमाघरों में भी होगा जबरदस्त एक्शन और मनोरंजन। दूसरी खबर यह है कि बॉक्स ऑफिस की टक्कर यही खत्म नहीं होती, यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक का सामना होगा श्रद्धा कपूर की फिल्म एथा से। दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर बाजी किसके हाथ लगती है। और तीसरी खबर यह है कि एथा की टीजर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। लक्ष्मण उटेकर के निर्देशन में बनी ये फिल्म प्रसिद्ध मराठी लावणी कलाकार विठाबाई नारायण गांवकर के जीवन से बड़े प्रेरित बताई जा रही है। टीजर में श्रद्धा कपूर एक लोकप्रिय लावणी नृत्यांगन के रूप में नजर आने वाले, जो बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद मंच पर प्रस्तुति देती है। दमदार अभिनय, भावनात्मक कहानी और शानदार विजुअल्स ने फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दी है। फिलहाल तीन का तड़का में फर्स्ट जो खबरें हैं कुछ यहीं तक। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे हमारा अगला गाना कविता शेठ और नीरज श्रीधर के आवाज में, जबरदस्त गाना कॉकटेल 2 से।

बढ़ते हैं सीधे अगले तड़के की ओर और अब खबर आ रही है अल्फा की बॉक्स ऑफिस रफ्तार के बारे में। जी हाँ, अल्फा की जो बॉक्स ऑफिस रफ्तार अब थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है। आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के पहले 3 दिनों में काफी अच्छी शुरुआत की, लेकिन वीकेंड्स में कमाई की गिरावट देखने को मिली है। 6 दिनों में फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का करीबन 44.95 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब सभी की नजरें आने वाले वीकेंड पर है कि क्या अल्फा एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकती है या नहीं। फिलहाल किसने किसने आपने अल्फा देखी है बताइएगा। अब हम जिन्होंने भी अल्फा देखी है वो सब रियलाइज़ कर ही रहे होंगे कि फिल्म कैसी है और क्या ये रफ्तार पकड़ सकती है या नहीं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं अदनान सामी और कायानी की आवाज़ में एक और गाना। जी हाँ, बारिश का दिन है तो फिर कुछ बारिश वाले गाने तो बनते हैं, सुन लेते हैं ये गाना।

0: चिड़ी की घड़ी में समय हो गया है 3:16:50 का, और चलिए अब 3 का दरका के अंतर्गत परियोजना प्रस्तुति की ओर सीधे चला जाए क्या? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3:30 बजे से आप सुनेंगे अब विशेष प्रोग्राम एनसीईआरटी का।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
0: नमस्कार, परियोजना प्रस्तुति के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे परियोजना प्रस्तुति में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में, जो कि केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि लाखों परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार घर बनाने, खरीदने या आवास से जुड़ी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यदि आपका या आपके किसी परिचित का इस योजना के लिए पात्रता है तो आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। हमें हमेशा अधिकृत सरकारी पोर्टल या अपने नगर निकाय के माध्यम से ही आवेदन करें और किसी भी तरह से झूठे वादों या बिचौलियों के से सावधान रहे। याद रखिए, पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता बल्कि वो सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव होता है। यही सोच प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को खास बनाती है। तो श्रोताओं, आइए जागरूक बने, सही जानकारी स्वयं भी प्राप्त करें और अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर पात्र परिवार और आशियाने का सपना पूरा कर सके। इसी संदेश के साथ आज की परियोजना प्रस्तुति में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नई योजना, नई जानकारी और नए विषय के साथ चायन क्लासिक्स में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिलहाल वापस लौटते हैं 3 का तड़का की ओर।
1: 107 FM Rainbow Presents, परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का, 3 का तड़का, 3 का तड़का, 107 FM Rainbow पर 3 का तड़का, 107 FM Rainbow पर, Rainbow पर।
0: तो दोस्तों चलते हैं अब 3 के तड़के के अगले तड़के की ओर, जो है धमाल 4 की। जी हाँ, हंसी का धमाका करने के लिए तैयार है धमाल 4, और रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग शानदार संकेत दे रही है। अभी भले ही आधे से कम शो बुक हुए होंगे लेकिन दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। धमाल फ्रेंचाइजी की जबरदस्त लोकप्रियता और अजय देवगन के स्टारडम के दम पर ट्रेंड का अनुमान ये है कि फिल्म पहले ही दिन 14 से 15 करोड़ रुपए की नेट ओपनिंग कर सकती है। अगर रिलीज के बाद दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो ये आंकड़ा और भी ऊंचे छलांग लगा सकता है। अब देखना होगा कि धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर हंसी के साथ कमाई का भी नया धमाका करती है या नहीं। फिलहाल

जब फिल्मों की बात होगी तो फिर OTT अपडेट भी दे देते हैं। शुक्रवार घर बैठे एंटरटेनमेंट का डबल नहीं बल्कि फुल पैक धमाका होने वाला है। 10 जुलाई को

एक अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई दमदार फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं, आइए जानते हैं इस हफ्ते OTT की लाइनअप। सबसे पहले बात करते हैं इक्का की। सनी देओल और अक्षय खन्ना की जोड़ी पहली बार एक कोर्ट रूम थ्रिलर में नजर आएगी। फिल्म में दिया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख भी अहम भूमिकाओं में है और ये फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होने वाली है, स्ट्रीम होने वाली है। और अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो मिगुएल एंजेल ब्लैंको द 48 आवर्स दैट चेंज्ड स्पेन भी इसी दिन OTT पर रिलीज हो रही है। ये 1997 में स्पेन में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना की कहानी पेश करती है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए OTT लेकर आ रहा है लैंड ऑफ फुटबॉल। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज केरल और वहां के लोगों के फुटबॉल के जुनून को बेहद दिलचस्प अंदाज में दिखाता है। वहीं एक्शन के शौकीनों के लिए OTT पर आ रही है बाल्टी। जी हाँ, दमदार एक्शन और रोमांस से भरपूर इस फिल्म में शेन निगम मुख्य भूमिका में है। और अगर आपका मूड कॉमेडी थ्रिलर देखने का है तो OTT पर रिलीज हो रही है परिमला एंड कंपनी। जयराम और उर्वशी की ये फिल्म एक मध्यम वर्गीय परिवार की मजेदार और रोमांचक कहानी लेकर आ रही है। तो इस वीकेंड पॉपकॉर्न तैयार रखिए क्योंकि OTT पर मनोरंजन का पूरा खजाना आपका इंतजार कर रहा है। और फिलहाल के लिए हमारा समय भी 3 का तड़का में वो भी ऑलमोस्ट समाप्त हो चला है क्योंकि इसके बाद थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे NCERT का स्पेशल प्रोग्राम 3:30 बजे से। और पर उससे पहले जाते जाते भाई प्यारा सा गाना तो सुनाना बनता ही है, जो कि है बेनी दयाल की आवाज़ में राजा नटवरलाल फिल्म से। तो मिलते हैं वापस 5:15 पर चाय एंड क्लासिक्स के साथ। उसके बाद फिर 7 बजे से छाया लोक तो रहेगा ही भाई। तो तब तक के लिए बने रहिए 107 FM रेनबो है ये। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
1: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
1: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमय दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
1: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल,
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी,
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
2: जी जी जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के

0: वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश।

0: अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

अधिकारियों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: कैसे धोली तुमने? ये तो लात मारती है। इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ।
1: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
1: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
1: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
3: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
1: जी,
3: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
1: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
3: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
1: जी पिताजी।
3: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
1: ठीक है।
3: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
1: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
3: अरे प्रवाहन।
0: जी पिताजी।
3: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
0: वो पिताजी,
3: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
0: जी वो
3: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
0: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
4: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे। क्यों देवदत्त?
1: हाँ हाँ पिताजी।
0: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
4: हाँ।
0: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे। खेत बस तैयारी समझिए।
3: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
0: जी?
3: ने कल हस्तिनापुर जाना है।
4: पर क्यों पिताजी?
3: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
4: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी,
4: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
3: बहुत अच्छा।
4: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
0: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
4: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
3: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
4: जी पिताजी।
3: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
4: अच्छा पिताजी।
3: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
0: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
2: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
3: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
0: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
1: और क्या,
0: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
2: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
0: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
3: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
0: जी पिताजी।
3: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
0: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
4: और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
0: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
4: हाँ।
0: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
3: हाँ ये तो है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: अरे क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
4: लगता है नहीं जीतेगा।
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा।

0: हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
1: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
2: अरे हाँ चलो पास से देखते हैं।
1: हाँ चलो चलो।
2: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
0: वाह। अरे हाँ इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
2: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ इसे पकड़ लेते हैं।
1: चलो चलो।
2: अरे वाह। अरे अरे चलो इसे पकड़ लेते हैं।
1: ये पकड़ा।
0: अरे ये कोलाहल कैसा है?
3: छोड़ दो छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो।
1: नहीं, नहीं,
3: शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
0: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
1: अरे चलो चलो भाग चले। आचार्य को बता दें कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो
1: क्या
0: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
1: हाँ। अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
1: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
1: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
4: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुनछो कैफे कोलकाता,
2: कैफे कोलकाता
1: 107 FM रेनबो ते कैफे कोलकाता।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ 107 एफएम रेनबो पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लो 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो।
0: जी हाँ, छाया लो के प्रोग्राम का नाम। और आज है थर्सडे, यानी कि सुनेंगे हम
2: नजारा फिल्मों का।
0: दोस्तों, सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलती तस्वीरों का नाम नहीं, ये उन अनगिनत सपनों का संसार है जो कैमरे के सामने कम और उसके पीछे ज़्यादा जिए जाते हैं। जब हम थिएटर में बैठकर किसी फिल्म पर तालियां बजाते हैं, किसी गाने के साथ गुनगुनाते हैं या किसी संवाद को सालों तक याद रखते हैं, तब शायद ही कभी सोचते हैं कि उस एक दृश्य के पीछे कितनी मेहनत, कितनी उलझने, कितने फैसले और कितनी कहानियाँ हैं। नमस्कार, मैं हूँ पापिया और आप सुन रहे हैं नज़ारा फिल्मों का। आज का ये सफर थोड़ा अलग है। आज हम फिल्मों की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उन कहानियों की कहानी सुनेंगे जो बरसों तक कैमरे के पीछे छिपी रही। कुछ राज कलाकारों ने वर्षों बाद अपने इंटरव्यू में बताए, कुछ निर्देशकों ने अपनी यादों में साझा किया और कुछ बातें मेकिंग डॉक्यूमेंट्री के जरिए दुनिया तक पहुंची। यानी आज का हर पड़ाव आपको आपकी पसंदीदा फिल्मों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस फिल्म से जिसका नाम आते ही दोस्ती, साहस, बदला और यादगार संवाद एक ही साथ आंखों के सामने तैरने लगता है, यानी कि शोले।

0: दोस्तों कहते हैं कि किसी फिल्म का अंत उसकी पहचान बन जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शोले का वो अंत जिसे हमने सिनेमा घरों में देखा है असल में फिल्म का पहला अंत था ही नहीं। रमेश सिप्पी जब फिल्म बना रहे थे तब उनकी कल्पना में ठाकुर का बदला कहीं ज्यादा तीखा था। मूल क्लाइमेक्स में ठाकुर गब्बर को पुलिस के हवाले नहीं करता, वो अपने लोहे जड़े जूतों से गब्बर को मार डालता है। ये दृश्य फिल्माया भी गया था। पूरी यूनिट को लगा था कि यही अंत दर्शकों को सबसे ज्यादा संतुष्ट करेगा, क्योंकि पूरी फिल्म ठाकुर के प्रतिशोध की यात्रा है। लेकिन तभी बात पहुंची सेंसर बोर्ड तक। उस दौर में ये माना गया कि अगर कानून अपने हाथ में लेने वाले नायक को सही ठहराया गया तो उसका गलत संदेश जाएगा। बोर्ड ने आपत्ति जताई और क्लाइमेक्स बदलने के लिए कहा। रमेश सिप्पी की सामने मुश्किल थी, फिल्म लगभग तैयार थी, सेट लग चुके थे, कलाकार अपना काम पूरा कर चुके थे, लेकिन आखिरकार क्लाइमेक्स दोबारा शूट किया गया और वही अंत रखा गया जिसमें पुलिस आकर गब्बर को गिरफ्तार करती है। दिलचस्प बात क्या है पता है कि अगर सेंसर बोर्ड उस समय ये बदलाव न करवाता तो शायद आज शोले का आखिरी दृश्य कुछ और ही होता। एक फैसला जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के अंत को हमेशा बदल दिया। चलिए इसी बात पर हमारे पहले कॉलर को ले लिया जाए ऑन एयर। हेलो
1: हेलो, नमस्कार पापिया जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में।
1: जी जी जी जी जी पापिया जी, मैं मोहम्मद नासिर दरभंगा बिहार से।
0: जी बताइए, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे घर परिवार में सब ठीक ठाक?
1: जी जी जी, घर परिवार में भी सब अच्छा है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी।
0: एकदम बिल्कुल, आप लोगों की दुआ है कि मैं एकदम सही हूँ, एकदम मतलब मस्त हूँ कह लीजिए। और कैसा है मौसम का हाल चाल, कैसा है वहाँ?
1: मौसम का हाल इन दिनों पापिया जी बहुत अच्छा हो चुका है बिहार में, इसलिए कि बारिश और मानसून का जो दस्तक है लगभग लगभग तमाम शहरों में हर जगह जो है सो आ चुका है। तो उस सीजन में ये क्या कहते हैं कि बिहार में भी जो है दस्तक दे चुका है और कुछ दिनों से बारिश रिमझिम बारिश देखने के लिए मिल रही है और ठंडी ठंडी फुहारों के साथ जो है ना आपसे बात करने का भी मौका मिल पा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इन दिनों बारिश हो रही है बिहार में भी।
0: जी थैंक यू सो मच। तो बताइए आज के विषय के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन से फिल्म के बारे में बात करना चाहेंगे आप?
1: जी आज के विषय के बारे में तो मैं शोले फिल्म जो अभी आपने गाना सुनाया उसके बारे में ही मैं कहना चाहूँगा कि वो फिल्म एक यादगार फिल्म ही नहीं बल्कि एक मैं अपने तरफ से कहूँ तो पूरे हिंदुस्तान में देखने वाली एक ऐसी फिल्म रही जिसके डायलॉग आज के जनरेशन, उस जनरेशन का ये फिल्म है जो रमेश सिप्पी साहब ने बनाया था, उस जनरेशन से लेकर के आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको भी बहुत सारी उसकी डायलॉग याद हैं, जबकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये पता नहीं होगा कि कौन सी मूवी का है, लेकिन वो डायलॉग है वो आज भी लोग याद करते हैं, जानते कितने लोग थे, ठाकुर तेरा क्या होगा, ये डायलॉग आज भी लोगों के जुबान पर है। जब कहीं किसी तरह का कोई बात होता है तो कॉमेडी के रूप में हो या फिर हंसी मजाक के रूप में हो लोग आज भी उसको कह देते हैं
0: जी।
1: और बहुत अच्छी फिल्म है ये थी और बहुत अच्छा लगा था। और दूसरी बात, मैं अपने तरफ से आज चूंकि संजीव कुमार को भी लेकर के प्रोग्राम पेश किया गया था तो मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा अपनी तरफ से
0: जी,
1: और गुरुदत्त साहब को भी मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और उन्हीं संजीव कुमार साहब जो हमारे और आप तमाम लोगों के बीच में नहीं रहे, मैं 47 साल की उम्र में हम सबको छोड़ करके चले गए दुनिया से, और नीचे फिल्म का एक गाना है गम का फसाना बन गया अच्छा, फिल्म मनचली 1974 की फिल्म है, किशोर कुमार की आवाज है और लीला चंद्रलेखर जो कलाकार थी वो उनके साथ अभिनेता थी। मैम तो ये गाना मुझे सुनना है,
0: किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं गाना?
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगा, उसके बाद बेलिया घाटा कोलकाता में रहने वाले हमारे दोस्त पिशु जी को और देवेंदा को और नेशनल जी को आवाज करना।
0: चलिए आपके अगर दोस्त सारे सुन रहे हो तो डेफिनेटली उनको बड़ा उनके बड़े बड़ी खुशी होगी कि आपने डेडिकेट किया है ये गाना, है ना?
1: जी।
0: चलिए थैंक यू नासिर साहब, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया और इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं किशोर कुमार की आवाज में गम का अफसाना।
2: क्या हुआ?
3: हाय, गम का फसाना
2: बन गया अच्छा
3: अच्छा जी
2: एक बहाना बन गया अच्छा
3: अच्छा।

0: थैंक यू सो मच जय बाल, बहुत बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच।
1: बाय, तुम सुनियो एक तक, कुछ कुछ होता है देखिए, एक तक गान सुनियो।
0: ओके चलिए सुनाते हैं आपको, चलिए चलिए सुनाते हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं। तो चलिए कुछ कुछ होता है का बहुत ही प्यारा सा गाना चलिए सुन लेते हैं, उदित नारायण और ज्ञानी की आवाज़ में।

चलिए दोस्तों, अब अगले फिल्म जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है अंदाज़ अपना अपना। जी हाँ, आज अगर आप किसी से पूछें कि बॉलीवुड की सबसे मज़ेदार कॉमेडी फिल्मों में कौन सी फिल्में सबसे ऊपर हैं, तो अंदाज़ अपना अपना का नाम ज़रूर आएगा।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1994 में रिलीज होने के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई। उस समय इसे सामान्य प्रतिक्रिया मिली। किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही फिल्म आने वाले वर्षों में कल्ट क्लासिक कहलाएगी। बरसों बाद निर्देशक राजकुमार संतोषी और फिल्म से जुड़े कई कलाकारों ने इंटरव्यू में बताया कि शूटिंग के दौरान हालात बिल्कुल आसान नहीं थे। फिल्म में एक साथ दो बड़े सितारे थे, आमिर खान और सलमान खान। दोनों अपने अपने दूसरे प्रोजेक्ट में भी व्यस्त थे। नतीजा ये हुआ कि कई बार दोनों की डेट्स एक साथ मिलना काफी मुश्किल हो जाता था। ऐसे में पूरी यूनिट को शूटिंग का कार्यक्रम बार बार बदलना पड़ता था। और एक दिलचस्प बात भी सामने आई है कि फिल्म की शूटिंग लगभग डेढ़ साल तक अलग अलग स्केड्यूल में चली। कई बार ऐसा हुआ कि जिस दृश्य की शुरुआत महीनों पहले शूट हुई उसका अगला हिस्सा बहुत बाद फिल्माया गया। इसलिए कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल और चेहरे की बनावट तक का रिकॉर्ड बहुत सावधानी से रखा जाता था ताकि पर्दे पर दर्शकों को कोई अंतर महसूस न हो। और फिल्म के संवादों की बात करें तो उनमें से कई संवाद कलाकारों की सहज अदायगी की वजह से और भी यादगार बन गई। तेजा मैं हूँ, मार्क इधर है या क्राइम मास्टर गोगो जैसे किरदारों की लोकप्रियता का अंदाजा शायद उस समय किसी को नहीं था। शक्ति कपूर ने भी बाद में कई बार कहा कि उन्हें नहीं लगा था कि क्राइम मास्टर गोगो इतना बड़ा पॉप कल्चर आइकॉन बन जाएगा। और एक और राज पता है जो बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्म के रिलीज होने के बाद कुछ साल तक इसकी ज़्यादा चर्चा हुई नहीं, लेकिन जब ये बार बार टेलीविजन पर दिखाई जाने लगी तब एक नई पीढ़ी ने इसे अपनाया। लोगों ने संवाद याद किए, किरदारों की नकल की और देखते ही देखते ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाने लगी। यानी जिस फिल्म को रिलीज के समय वो सम्मान नहीं मिला वो फिल्म समय के साथ दर्शकों के दिलों की बादशाह बन गई। चलिए सुनते हैं इसी बात पर इस फिल्म का ये गाना।

0: सूर्य की घड़ी में 7:30 होने चला है और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि सुप्रिया जी ने कॉल किया था हावड़ा से और उन्होंने बताया कि भाई उनका फेवरेट जो फिल्म है वो है प्रेम रोग, उनको बड़ा पसंद है। थैंक यू सुप्रिया जी कॉल करने के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो ऑन एयर नहीं आ पाई। फिलहाल हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, चलिए देखते हैं कौन है। हेलो
1: होते हैं हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल
0: जी। चंचल जी कैसे हैं, सब ठीक ठाक? बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे।
1: और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सभी परिवार में जो जो हैं वो सब खुशहाल हैं, होंगे, अच्छे होंगे।
0: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बताइए,
1: आज में दीदी आज मौसम भी बहुत खुशहाल है, अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल एकदम। तो आज आज स्पेशल क्या हुआ फिर?
1: जी स्पेशल,
0: जी स्पेशल क्या बना घर पे?
1: घर पे आज अभी आपकी मतलब भाभी जी जो हैं वो अभी बाजार गए, मैं बैठा हुआ हूँ, उनका इंतजार कर रहा हूँ। और आज कुछ स्पेशल ही होगा कुछ।
0: अच्छा ओके ओके,
1: चलिए मौसम भी है तो मैंने आज फिल्म वारिस का वो गाना मुझे याद आ रहा है और वो फिल्म आ गया था एक स्विमिंग पूल के ऊपर में ये पिक्चराइज किया गया था
0: जी।
1: लहरा के आया है झोंका बाहर का फिल्म वारिस, जितेंद्र और हेमा मालिनी जी ने इस पर रोल बहुत ही अच्छा अच्छी ढंग से वो फिल्म आया है।
0: ओके
1: okay. और गीत सुनना चाहता हूँ, प्लीज आप सुनवाए और सभी श्रोता है जो हमारे सुनेंगे। और खास करके मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी श्रोताओं के लिए और खासकर आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक
0: यू, फिर मुलाकात होगी चंचल जी। ओके
1: ओके, गुड नाइट,
0: गुड नाइट, बाय। ये थे हमारे यूनिक से श्याम कुमार चंचल, जो बातें भी चंचल करते हैं और बड़े प्यार से प्यारी प्यारी बातें करते हैं। फिलहाल जो रिक्वेस्ट किया है उन्होंने वो सुन लेते हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: गाने सुनते सुनते आपसे बातें करते करते समय कैसे बीत रहा है इसका पता ही नहीं चल रहा है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं हमारे अगले कॉलर क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: गुड इवनिंग पापिया जी।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मैं मुनीरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण शाखा लाहौड़ा से।
0: जी मुनीरुद्दीन दा, कैसे हैं? सब ठीक ठाक, घर परिवार में सब ओके?
1: बहुत अच्छा है। मैं यही बोलना चाहता हूँ,
0: जी
1: साथ अगर देंगे तो मुस्कुराएंगे हम, मुस्कुराएंगे जरूर। साथ अगर देंगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, प्यार अगर फिर से करेंगे तो निभाएंगे जरूर। कितने भी कांटे क्यों ना हो राहों में, कितने भी कांटे क्यों ना हो राहों में,
0: जी
1: आवाज अगर दिल से देंगे तो आएंगे,
0: आएंगे जरूर। अरे वाह।
1: आप हम सब श्रोताओं को दिल से पुकारे और हम ना आए, इससे मुश्किल नहीं नामुमकिन है।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और हमें एक पिक्चर देखा है काफी दिन पहले।

0: जैकी श्रॉफ और पूनम ढिल्लों का फिल्म है तेरी मेहरबानियाँ। लीड कैरेक्टर जैकी श्रॉफ और पूनम ढिल्लों है, लेकिन उसमें से एक सर्वेंट का करेक्टर भी है, अच्छा करेक्टर है, लेकिन मेन करेक्टर है उसके एक डॉग का जो मोती भूल बुझ कर पूनम ढिल्लों का जो मार दिया, और वो मोती को बुझा जब मोती उसको मारा, लेकिन वो मारा नहीं है। और जैकी श्रॉफ बहुत डॉग को मारा, लेकिन जब ऐसा शो नहीं मारा तो जैकी श्रॉफ जो गाना गाया वो तेरी मेहरबानियाँ
1: जी,
0: वो आज भी याद है और सबको चौक में आंसू आ गया, आंसू का आंसू आ गया
1: जी
0: वो गान सुनकर।
1: तो वैसे मोनू जी, पता है इस फिल्म में जो डॉग था, जो तेरी मेहरबानियाँ में जो ये डॉग जो था, ये जैकी श्रॉफ का खुद का ही कुत्ता है, शायद बहुत लोगों को पता होगा।
0: नहीं, मैं पता नहीं है
1: जी, उन्हीं का खुद का पालतू।
0: देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, उन्हीं का खुद का पालतू कुत्ता था ये।
0: अब बहुत अच्छा किरदार निभाया, जो किरदार डॉग निभाया बहुत यादगार है
1: जी, एकदम बच्चों को भी बहुत पसंद आया था वो फिल्म एक टाइम पे। बच्चे भी देखे।
0: एक इंसान वो माने बात नहीं मानते, लेकिन वो जो डॉग कुत्ता जो बात मना है तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा किरदार है
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इसी फिल्म का गाना सबीर कुमार की आवाज में तेरी मेहरबानियाँ
1: जी,
0: ये गाना प्लीज सुना दीजिए।
1: चलिए सुनवाते हैं आपको, और थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बाय, गुड नाइट। तो ये थी मुनीर दिंदा, और सुनना चाहते हैं तेरी मेहरबानी का टाइटल ट्रैक, तो चलिए सुन लेते हैं।

0: दोस्तों 1998 में जब निर्देशक मणि रत्नम ने दिल से फिल्म पर काम कर रहे थे तब उनके मन में एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो खूबसूरत भी हो और बेचैन भी। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बना उसका संगीत और खास तौर पर उसका गीत छैया छैया। आज भी जब ये गीत बजता है तो सबसे पहले आंखों के सामने एक चलती हुई ट्रेन का दृश्य आता है, लेकिन इस दृश्य के पीछे की कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। बरसों के बाद भी कोरियोग्राफर फराह खान और फिल्म से जुड़े लोगों ने कई इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में इस गाने को किसी स्टूडियो सेट पर फिल्माने का विचार था, लेकिन मणिरत्नम कुछ ऐसा चाहते थे जो पहले कभी भारतीय सिनेमा में इस पैमाने पर न देखा गया हो। तभी चलती हुई ट्रेन की छत पर गीत फिल्माने का विचार सामने आया। सुनेंगे इस गीत को, पर उससे पहले ले लेंगे हमारा अगला कॉल। चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।

0: मैं अलीपुर कलकत्ता से बात कर रहा हूँ। बहुत दिन से नंबर मिला रहा और नंबर बता ही नहीं रहा।
1: कोई बात नहीं, अब आपसे कनेक्शन जुड़ गया हमारा, बताइए।
0: हाँ जी, हाँ जी जी, मेरा किस्मत अच्छा है जी, भगवान का दर्शन मिलना मुश्किल है लेकिन आप लोग का भी दर्शन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए, गलत बात है ये।
0: जी जी जी, मेरा नाम गणेश उपाध्याय है, मैं अलीपुर कलकत्ता से बात कर रहा हूँ
1: जी। अरे वाह, एकदम पास के लोकेशन से बात कर रहे हैं
0: आप
1: तो।
0: आप बोलिए,
1: आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं ये अगर हमें बता दे पहले तो।
0: जी जरूर बताएंगे, मगर कहने का मतलब जी, आज संजीव कुमार और धर्मेंद्र जी के लेकर के फिल्म जो आप बात कर रहे हैं, ये दोनों ही
1: गुरुदत्त, गणेश जी गुरुदत्त की बात हो रही थी, गुरुदत्त और संजीव संजीव कुमार, इन दोनों का जन्मदिन है आज।
0: ये कोई है नहीं, सभी तो गुजर गए, स्वर्गवास हो गए
1: जी।
0: तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर धर्मेंद्र का मेरा एक गाना हमको सुनने का बहुत इच्छा है।
1: बताइए।
0: वो माँ फिल्म का है, माँ तुझे ढूंढू कहाँ,
1: माँ फिल्म से।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धर्मेंद्र का बहुत अच्छा ही उसमें अभिनय किए थे और निरूपा राय माँ बनी थी।
1: अच्छा, मैं देख लेती हूँ कि ये गाना है कि नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये थे गणेश जी हमारे साथ और सुनना चाहते हैं माँ फिल्म से, माँ तुझे ढूंढू कहाँ। फिलहाल मैं खोजती हूँ, तब तक आप छैया छैया एंजॉय कीजिए, मैं फिर ढूंढ के उनका गाना जरूर सुनाऊंगी।

चलिए हमारे सफर के आखिरी मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं और बात करेंगे अब बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई तब दर्शकों ने सिर्फ एक फिल्म नहीं देखी बल्कि एक ऐसी दुनिया देखी जिसे भारतीय सिनेमा की जो पहले उसके पैमाने थे उसको बदल के रख दिए। बरसों बाद निर्देशक एसएस राजमौली ने बताया था कि माहेश्वरी पहले कंप्यूटर पर नहीं कागज पर पैदा हुई थी। महीनों तक कलाकार कंसेप्ट डिजाइन और आर्ट डायरेक्टर सिर्फ इस बात पर काम करते रहे कि अगर सचमुच ऐसा साम्राज्य होता तो उसके महल कैसे दिखते, सैनिक कैसे चलते, हथियार कैसे बनते और वहां का जीवन कैसा होता। प्रभास और राणा दग्गुबाती ने भी अपने किरदारों के लिए लंबे समय तक शारीरिक प्रशिक्षण किया। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध अभ्यास उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए। कई दृश्यों में वीएफएक्स का सहारा भी लिया गया लेकिन उससे पहले कलाकारों को हर लड़ाई का पूरा ब्लॉकिंग या मूवमेंट वास्तविक रूप से करना पड़ता था ताकि कंप्यूटर सिर्फ दृश्य को भव्य बनाए अभिनय को नहीं। और फिर आया वो सवाल जिसने पूरे देश को बेचैन कर दिया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? शायद ही किसी फिल्म ने अपने अगले भाग के लिए दर्शकों में इतनी उत्सुकता पैदा की होगी उस वक्त। ये सिर्फ एक संवाद नहीं था बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था। ऐसे ही रहस्यों को हम जारी रखेंगे किसी और दिन किसी और समय कुछ और बात और गीतों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नजारा फिल्मों का चल रहा है और 8 बजे से आज रहेंगी हमारी बहुत ही प्यारी सी मधुर खूबसूरत आवाज वाली पूनम दी आपके साथ। कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रोग्राम और आप डेफिनेटली रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम श्योर वो रिक्वेस्ट लेना चाहेंगी। फिलहाल के लिए चलिए जान लेते हैं भाई कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, लेकिन ये तो हम जान चुके हैं फिलहाल। लेकिन गाना जो है इस फिल्म का बहुत फेमस हुआ था, खोया है, तो ये गाना हम सुन लेते हैं। स्पेशली इसके म्यूजिक के लिए काफ़ी फेमस था, हुआ है, अभी भी फेमस है इनफैक्ट। तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना और मिलते हैं किसी और दिन किसी और समय कुछ और बातों और गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूँ ही।

और जाने से पहले गणेश दास से मैं ये माफी मांगना चाहूंगी कि उन्होंने माँ फिल्म का गाना रिक्वेस्ट किया था, धर्मेंद्र की फिल्म माँ का गाना रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो गाना फिलहाल हमारे पास नहीं है. आई एम सो सॉरी. डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगी हमारी कि आप जो रिक्वेस्ट करें उस गाना को हम आपको सुना सकें.

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोग। छाया लोग बरस

हमारा और आपका साथ बना रहेगा अगले 9 बजे तक, तो सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ओनली ऑन एक्सो 7 आगे आप सब जानते हैं।

8:15 और अभी कहाँ चलते हैं? अभी तो चलने में बहुत देर है। हाँ, अगर धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात हो तो मैं ज़रूर राजी हूँ। वैसे गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं आर्यभवन, आवाज़ें कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति, और फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी। सच में बारिश में कागज की कश्तियां चलाना, कीचड़ में खेलना और पहली बारिश में भीगना, उफ, लाखों करोड़ों खर्च करके भी ये मजा नहीं आ सकता जो इन बातों में है, है ना? आप सब भी बचपन की ये बातें, ये यादें मिस करते होंगे। अब आपका तो पता नहीं, मैं तो करती हूँ। और इसीलिए एक और खूबसूरत नगमा जो कि बारिश से ही जुड़ा हुआ है, सुनते रहिए, साथ रहिए।

गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं संदेश संडालिया। आवाज सुनिधि चौहान की और फिल्म का नाम चमेली। 8:22 और बारिश की बातों से कहीं मन भरता है क्या? ना ही बातों से और ना ही खूबसूरत गानों से। और बारिश के दौरान ऐसा लगता है ना जैसे कि समय ठहर सा गया है, धीमा सा हो गया है, बाहर की भागदौड़ कम हो जाती है और हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। खिड़की के पास बैठकर बारिश की आवाज़ आ हा हा हा उसे सुनना ध्यान लगाने जैसा अनुभव देता है, नहीं? बातें तो और भी करने का मन है, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले एक बेहद खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: आठ बजकर 34 मिनट, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक पूनम के संग ओलियोनिक 107, दिल से दिल तक। और चूंकि आज मैं बारिश से रिलेटेड बातें करने के मूड में हूं और गाने भी आप सब समझ ही रहे हैं कि वैसे ही हैं, तो सचमुच ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सब एक साथ महसूस करते हैं। जब बाहर बारिश हो रही होती है ना, तो घर के अंदर बैठकर चाय की प्याली और अपनों का साथ, आ हा हा हा, उस पल को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये मौसम रिश्तों में गर्माहट घोलने का काम करता है। और इस बात के बाद एक खूबसूरत सा नगमा तो बनता है ना, तो सुनते रहिए, साथ रहिए।

बादलों की गड़गड़ाहट और बूंदों के गिरने की ताल में एक अपना ही संगीत है, नहीं? और ये संगीत दुनिया के सबसे बेहतरीन वाद्य यंत्रों से भी ज्यादा सुकून देने वाला होता है। बारिश का हर रूप खूबसूरत है, चाहे वो हल्की फुहार हो, रिमझिम बूंदे हो या फिर मूसलाधार बारिश। ये मौसम हमें सिखाता है कि खुशी अक्सर छोटी छोटी चीजों में ही छिपी होती है, जरूरत है उन्हें ढूंढने की। फिलहाल 8:47 और वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और अगले 9 बजे तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:57 और अब पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।